0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि के तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है।

0: ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से

प्रोग्राम के दूसरा गेट दिल है तुम्हारा फिल्मत कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम लगा आवाज शुनिले शुनी थका सब बिल्लाते अपना खान ला किसान मेसेजेस खान आँची किना से लिना फुरी दी से आज फुजिर प्रोग्राम के सबसे पहला मेसेज लिखी गिना पठाई गिना आई गिना शामिल मीनार खान और तार डिमापुर लिखी गिना पठाई आ गुड मर्निंग वेस्ट लिखे से प्लेलिस्ट टू बेसि भल लगे और सुपर हिट ला गीत खान आ कईगना लिखी गिना पठाई मीनार खान अलग दिन अपना लगा मेसेज ना पुरी गिना आज आको वापस आई गिना प्रोग्राम दे जुड़ी गिना लिखी गिना पठाई दिया निमित्ते बेसि बेसि खुशी आसे अपना के प्रोग्राम दे स्वागत कर एंड अ वेरी गुड मर्निंग टू यू और आगे ला गीत खान भी शुनी गिना एन्जय कुरी थाकिबि कईगना अपना के जाना दी आसे और इते दूसरा मेसेज सुर रेडियो लिसनर्स ग्रुप खान पर एफ एम ट्राइकोपेला फैमिली सबके गुड मर्निंग विश लिखी गिना पठाई दी आसे और इते गवाही लगा गाना बजाई गिना शुनि दिया निमित्ते बेसि खुशी पासे कईगना दुर्गेश और गोलू नागनपुरी पर लिखी गिना पठाई आसे बेसि खुशी आसे अपना खान प्रोग्राम लगे जुड़ी आसे और साथे अपना खान लगा पसंदीदा गीत एक हुई भी सुरू सुरू पर शुनबले पाई तो अपना ला खुशी तो मैं लाभ खुशी आसे कईकना जाना दी आसे लम्बदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप

हम आपके हैं कौन फ्लेमर एसपी बालासुब्रमण्यम लगावास्ते हुनिले हुनि थका सब बिल्लाक इतिया समय करने आमी गलना प्रोग्राम सेस करुबले ला समय तो पुंची जाय से मुझे एक ता लास्ट मैसेज लोई दिया से गुड मॉर्निंग विश आको दी गिना सेली टू प्रा लिखी गिना पठाई से मुझे तार खनला नाम ठीक प्रा पूरी दी से ना पूरी दिया ना हु दिया तो तार पर कुआ से नाम तो ए वन प्रा प्रनाउंस कुरी दी से आरो एफएम ट्रैकपन ला फैंस खान के गुड मॉर्निंग विश Well, salutu, thank you so much. Jawab dia ni mite bisi khushi ase. Apnar aru apnar laga sathi khan sob karne aji laga din to sobse bhal din hobi koi gina wish kuri dia se. Huni thaka sob bilag etia pralo pasote apnar luke world news hunibo aru ami khan akolo kuria hobo 11 baji 30 minute moi loi gina hibo live phone in apnar khala pasan kuria la program. To itu somoy te aku ami khan sob lok kuria hobo etia karne सबसे लास्ट गीत बजाई दिया से एक दूजे के लिए फ्लेमोट गाया से एसपी बालासुब्रमण्यम लगा वास्ते और साथ गाया से लता मंगेशकर

0: Drag a band. News, music, and entertainment. FM 103 megahertz.
1: जी हाँ, अपने खन हुनिये से आकाशवाणी FM ट्रैक अपन 110 मेगाहर्ट्ज उन्हीं ठगा सब बिलाग अपने खन सब के स्वागत करे से अपने खन ला फेवरेट प्रोग्राम लाइफ ऑन इन प्रोग्राम जून टू हिंदी फिल्मी गिट्स प्रोग्राम टिया से अपने खन सब इटू प्रोग्राम टिया आएगी ना शामिल हो भी अपने खन डायल करी भी 0370-224-30360 नंबर आको कोई दिया से 0370-224-30360 इतु नंबर डायल करिबी मय लगत बातचीत करिबी आरो आपनर खाना पसंदीदा गीत खान जुन तो आपनर खान हुनी बुले कारने इच्छा आसे आपनर खान मांग करे आसे इतु मय यातिबरा बजाई दिबो आरो आपनर खान एन्जॉय करा होबो तो आमी खाना प्रोग्राम शुरू करि दिया से किंतु आपनर खान लगा कॉल्स रुखिया समय ते आमी खान मिलिकिना हुनीबो चोरी चोरी फिल्म की गीत गायसे अलका यज्ञिक

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जय माता दी बोले, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजुमल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। बोलिए आपका शुभ नाम।
1: पूरन वर्मा।
0: पूरन वर्मा जी, श्रोताओं के लिए आपका नाम बोलने से बहुत अच्छा लगेगा ना?
1: जी मैडम जी यस यस। तो आज फिल्म का नाम रहेगा चरणों की सौगंध।
0: चरणों की सौगंध में सिर्फ और सिर्फ एक ही गीत होगा साइट देखता हूँ। चरणों का सौगंध, ओके, चरणों का सौगंध में देखता हूँ। और बोलिए कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: इसमें एक गाना है किशोर कुमार और या तो अलका याग्निक की आवाज है या फिर अनुराधा पोटवाल, दोनों साथ में गा रहे हैं, तो आप देख लो। इसमें एक गाना है नारी शहर की नारी, ऐसा कुछ गाना है।
0: नारिया शहर की। किशोर कुमार और अलका का आवाज में है।
1: यस
0: सही है ये।
1: यस
0: ओके। और किसी को डेडिकेट करना है, नाम लेना है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनागा।
0: ओके थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश से, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है और गोल्डी बाई है, अमर साव है, अमल है, विमल है, रमेश पात्र है और अंजलि है और जितने भी कॉलर कोयमा के चाहने वालों को, तमाम श्रोता जिसका भी नाम छूट गया उनके लिए।
0: ओके ठीक है पूरन वर्मा जी, आपने कॉल किया और आज तो तीर लगा दिया आपने। जो मांग किया है वो भी है, मैंने बजाने के लिए ही तैयार करके रखा हुआ है। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद। गाना भी मिल गया और इतना समय भी नहीं लगा, तो आपका भी धन्यवाद।
0: ओके वेलकम। শুনি থাকা সববিলাক প্ৰগ্ৰামতে এইবাৰ দুচৰা গীত দি আছে চৰণ কি সৌগন্ধ ফিল্মত কিশোৰ কুমাৰ আৰু অলকা য়াগ্নিক লগা আৱাজতে। আৰু এইটো গীতটো শুনিবলৈ মনোগিনা পচন্দ কৰিছে আৰু কল কৰিছে অল দ্য ৱে ফ্ৰম ৰাজস্থান পুৰাণ বৰ্মা। আৰু তাৰ পৰা তাৰ লগা এফ এম ট্ৰাইকপেন লাই কিছুমান সাথীবিলাক আৰু যিমান জনবি শুনি আছে প্ৰগ্ৰেম এইটোখনকে ডেডিকেট কৰি দি কিনে মাং কৰিছে। তো শুনিব চৰণ কি সৌগন্ধ ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: किराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओके भगवान सिंह जी, बोलिए कौन सा गीत सुनना है आज?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है लोफर।
0: लोफर
1: जी, और गाने के बोल है कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू है रे कब्बान।
0: रुक जाइए, लोफर देखना पड़ेगा है कि नहीं
1: जी।
0: अगर है तो मैं बजा दूंगी। ओके, लोफर साइट नहीं है मेरे पास
1: दीदी। संग्राम फिल्म मिल जाएगी? संग्राम
0: हो सकता है शायद, संग्राम देखता हूँ। ओके संग्राम में सिर्फ और सिर्फ दो गीत है, वो है सल्तना मेरे नाम और यही तो है दोनों
1: दीदी भी। तो फिर एक आप बरसात की रात ढूंढ लीजिए, बरसात की रात फिल्म होगी।
0: बरसात की रात, ओके बरसात की रात हो सकता है। बरसात की रात में कौन सा गीत है?
1: वादा करके सजन नहीं आया।
0: ओके वादा करके सजन नहीं आया, हरिहरन और कविता शाहिद साबरी का आवाज में है ना?
1: जी नहीं दीदी, उसमें चार पांच गायक हैं इस गाने में।
0: इसीलिए गायक है हरिहरन है, कविता कृष्णमूर्ति है,
1: शाहिद साबरी। सही है दीदी, बिल्कुल सही है।
0: ओके ठीक है, और किसी का नाम लेना है?
1: जी हाँ दीदी, लेना चाहेंगे ना, शिवा लोहट जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्रे जी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष जी हैं, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकोन मुंडा जी, गंगाधर सावनकर जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, आपको भी डेलिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू भगवान सिंह जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: ओके वेलकम। उन्हें ढगा सब बिला खुनी बो बरसात की रात फिल्म की गीत गाय से हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, शाहिद साबरी और खरस लगा वास्ते और यू गीत टू पसंद करी किना अनुरोध करी से मध्य प्रदेश पर भगवान सिंह परमर और तार पर तार लगा किसुमान साथी बिला खन के डेडिकेट करी दी किना से, तो खुनी बो बरसात की रात।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन कौन से?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बोले, कौन सा गीत सुनना है? जल्दी से बता दीजिए, समय छूट रहा है।
1: करण अर्जुन है क्या?
0: करण अर्जुन, पता नहीं, करण अर्जुन सबका सपने ये मांगते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं डाला है।
1: सूरज का दूध
0: हाँ, करण
1: गगन
0: अर्जुन है, करण अर्जुन है। कौन सा गीत सुनना है?
1: से जो लगा, सूरज कब दूर गगन से।
0: अच्छा, करण अर्जुन में
1: हाँ,
0: भंगड़ा पाले आजा आजा, एक मुंडा मेरी उम्र दा, गुपचुप गुपचुप, और जाती हूँ मैं, और ये बंधन तो यही है।
1: तो गुपचुप गुपचुप वाला सुनवाना।
0: ओके, ठीक है, जल्दी से नाम लेना अगर
1: हाँ,
0: लेना है तो।
1: सबसे पहले तो आपको
0: ओके, थैंक यू।
1: भगवान सिंह परमार, पूरे ब्रह्मा जी, गजराज योगी जी, जैसे सिर राजपूत है, मंगलाल चंदेल है, तुम सिंह सिसोदिया है, और धर्मवीर है दिल्ली से, और लोकन वर्मा है, तनुश्री है, रक्कू बिल्ले मेहता है, और रमेश पात्र है, अमर सिंह है, पूनम जी है कानपुर से, गोल्डी जी है, अमन भस्मकारी, विमल भस्मकारी, राकेश शिमला से, अविनाश जी।
0: ओके, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही पढ़ दिया। ओके रमेश जी, आपने कॉल किया, आपका गीत भी सुनिए और एंजॉय कीजिए, एक्सप्रेस ऐसे ही लग गया है आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: जी, धन्यवाद।
0: ओके, वेलकम। होने ढगा सब बिल्ला प्रोग्राम के दूसरा गीत दिया से करण अर्जुन, फिल्मोट गया से इला अरुण आरो अलखा याग्निक लगा वास्ते आरो इटु गेट हुनी बोले मोनो इना मिखन लोटे कॉल कुरी के ना अनुरोध कुरी से मध्य प्रदेश प्रा रमेश प्रजापति आरो तार प्रा FM ट्रैक पर ला जिमान तार लगा साथी बिला का से तार खान सब के डेडिकेट कुरी दी गिना से तो हुनी बो करण अर्जुन फिल्म की गेट।

उन्हें ठगा सब बिल्ला के तीसरा बार सब क्या को स्वागत करिए से आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज पर और इतना समय इतना निदिया से आर जे एस चॉइस इन द फिल्म गान प्रोग्राम और अपना खान होने लगे से स्टार फिल्म नाजिया हसन लगा वास्ते प्रोग्राम में एक बार दूसरा गीत सुनिबो बापी लहरी लगा वास्ते फिल्म से डिस्को डांसर

सनम टेरिक असम फ्लेमत किशोर कुमार लगा आवाज टे हुनिले हुनि टगा सबबेलाक प्रोग्राम सेस करुबुले ला समय टे पुंची जाय से इटिया पर लपसते एफ एम रेनबो रिले प्रोग्राम दिया हुनि बर एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज आको अपना खनोटे वापस आइबो साम टी बजी प्रोग्राम सेस करुबो कारणे हुनिबो कसम पैदा करने वाले की फिल्म की गीत गाय से विजय बेनेडिक्ट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक छोड़ जाते हैं आपके दिलो जहां पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। 9868107070 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहां आप भेज सकते हो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, जो आपको पसंद है। अब आप कहेंगे प्रियंका मुझे इस गाने से ना मतलब मैं कुछ कनेक्ट कर जाता हूँ, वाइब कनेक्ट हो जाती है, या फिर इसकी बीट्स पसंद है, या ऐसे जुड़ी कोई याद कोई बात, जो आपका मन करे ना आप मुझे उस गाने के बारे में लिखिए, रीजन बताएंगे ना कि गाना क्यों पसंद है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 9868107070 और बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल ये गाना गुड आफ्टरनून गाइस।

What a masterpiece. Seriously guys, ये गाना सिर्फ रोमांटिक ट्रैक नहीं है बल्कि एक सफर है जो धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल ट्रांस का एहसास कराता है. आकाशवाणी रेन पर चल रहा है प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, और आपकी रिक्वेस्ट देख के समझ में आ गई है कि चलिए नंबर मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो नए लिसनर्स जुड़ते हैं उनके लिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोग्राम का फॉर्मेट. पहले तो नंबर है 9868107070, ये वो नंबर है जो ये आपको हमसे कनेक्ट करता है.

कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो सबसे पहले आया था, एग्जैक्ट 11:28 पे आपका मैसेज था. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. उसी के साथ हमें मैसेज आया है. ओके, ये है अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से, हमें लिखती हैं, वेलकम टू द शो विद फ्लास. डियर्स प्रियंका मैम, कैसी हैं आप? एंड मुझे वो सॉन्ग सुना है अरिजीत सिंह की वॉइस में, ए दिल संभल जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू. ओके, सुनिधि चौहान की वॉइस में ले डूबा, कविता कृष्णमूर्ति का भी आपने लिखा. चलो तीन चार चॉइसेस भेजी हैं अंशी, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इनमें से, क्योंकि पिछले बार जो मैं ट्राई नहीं कर पाई थी. और इसी के साथ राजेश कुमार चौहान जलंधर, नमस्कार, प्यार के कागज पे दिल की कलम से जिगर का है. ओके, ये गाना मोबाइल के समय में चिट्ठियों के समय की याद कराता है. जी बिल्कुल राजेश जी. और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैम, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से. फिल्म ईश्वर से आगे सुख है तो पीछे दुख है, सॉन्ग में नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, और जिंदगी को समझाते हुए हर दुख ज्यादा देर तक नहीं होता, खुशी में कंट्रोल रहे. ओके, क्या बात है, साथ में आपने सुझाव भी दे दिया. पता है मोहम्मद इम्तियाज जी, इस बात से मुझे एक बात याद आई, कहते हैं कि कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरे वक्त का एक सही बात होती कि वो जल्दी खत्म हो जाता है, और अच्छे वक्त की एक खराब बात होती है कि वो भी बीत जाता है. तो वक्त जो है वो कहते हैं ना, चलता रहता है समय की धारा की तरह, हमें भी बहते रहना है. और इसी के साथ मैसेज आया है. ओके, नमस्कार प्रियंका को, नमस्कार, आपने हमें तीन चार चॉइसेस भेजी हैं. इस समय गर्मी बहुत हो रही है, इंतजार है बारिश का, तो एक गीत सुना दीजिए. ओके, भगवती जी लिखती है न्यू दिल्ली से, आजकल तुम्हारा बॉलीवुड रील सुन नहीं पा रहे. ओ कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जरूर सुनिएगा. और इसी के साथ मैसेज आया है. ओके, नाम नहीं आया, आपने तीन चार चॉइसेस भेजी हैं. चेतन कुमार मनपुर बाजार, ओके, गया बिहार से मैसेज है. प्रियंका जी नमस्कार, आपके प्रोग्राम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी गाना सुनवा दीजिए. शैलेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच. और इस बार इस प्रोग्राम में तो आपकी मर्जी ही चलती है, मेरा वाला सॉन्ग जो है ये आप लोगों का है, और आपकी जो चॉइस होती है वो मेरी भी चॉइस होती है. इसी के साथ नीता वर्मा पीतमपुरा से हमें तीन चार चॉइसेस भेजी हैं. और इसी के साथ हमें, नमस्ते मैम, ओके, मैं नवलू वरक फ्रॉम मलपड़ गोवा से प्रोग्राम सुन रहा हूँ आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल. आज मुझे गाना सुनवा दीजिए फ्रॉम मिशन कश्मीर, सॉन्ग भूमरो भूमरो शाम रंग भूमरो. ओके, बहुत अच्छा ट्रैक है ये भी. और इसी के साथ, अच्छा मैंने ये आपका जो है सही इसका उच्चारण किया होगा जो आपने पूरा लिख के भेजा, आई होप. उसी के साथ हमें मैसेज आया है राधा और कविता का स्कूल ग्रुप फ्रॉम उत्तराखंड, और उन्होंने कहा है कि मौसम की सरगम को सुनना है खामोशी फिल्म से. ओके, मुझे यहाँ तक याद है ना कि इस गाने में जो नेचर और मेलोडी को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है ना. तो चलिए बिना देर के इस ट्रैक को सुनते हैं. मौसम की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा. लवली चॉइस.

वेल दोस्तों, ये हमें भगवती जी ने चॉइस भेजी है कि प्रियंका एक गीत अलका याग्निक की आवाज में सुना दो। जब से उन्हें पुरस्कार लेते देखा है, उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको आजकल सुनाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी गीत हम सुना देते हैं। जी हाँ, अगर तुम साथ हो, पद्म भूषण से सम्मानित की गई है, और यकीन मानिए अलका याग्निक की जो आवाज इस गाने में, क्या बहुत से उनके ऐसे ट्रैक है जो एवरग्रीन ट्रैक्स हैं, एक गहरी इमोशनल वॉर्म्थ होती है, टाइमलेस ग्रेस लेकर आती है उनकी वॉइस। तो चलिए उनकी क्रिस्टल क्लियर वॉइस को सुनते हैं।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, वेलकम बैक. आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा आपसे बातें करने के लिए. और दोस्तों, एक बात है कि आपको पता है कि गाने सुनना क्यों ज़रूरी होता है? अब आपको कहते हैं ना, म्यूज़िक थेरेपी है. कैसे हम फील करते हैं कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, होता है ना, कि गाना सुनते वक्त ब्रेन का जो फील गुड सिस्टम होता है ना, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ डोपामिन रिलीज होता है, जो खुशी और मोटिवेशन का सिग्नल देता है. जी हाँ, इससे मूड अपलिफ्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, और हल्का महसूस करता है. इसलिए गाना सुनना एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है. और गाने हमारे यादों से भी जुड़े होते हैं. कोई एक ट्यून हमें बचपन में ले जाती है, तो कोई एक लाइन किसी अपने की याद दिलाती है. ये इमोशनल रिकॉल हमारे दिमाग को सेफ फील कराता है, अकेलापन कम करता है, हमें संभालता है, हमें हिम्मत देता है. जी हाँ, और कहते हैं कि गानों को कुछ हर्ट्स होते हैं, इनके उस हर्ट्स पे ही हमें सुनना चाहिए. फ्रिक्वेंसी होती है, जी हाँ, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सब इम्प्रूव होता है गाने को सही तरीके से, सही राग, सही समय पे सुना जाए. कि हाँ जी हाँ, ये भी एक स्टडी होती है. तो हमारा ब्रेन जो है ना, वो सही मामले में एक्टिव होता है. और गाना सुनना शायद इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब दुनिया शोर मचा रही होती है ना, तो म्यूज़िक हमें अपनी ही धड़कन सुनाना सिखा देता है. अब हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ हमें आर डी बर्मन. जी बिल्कुल. अब जैसे कि ये हमें पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, रिम झिम भीगे भीगे. ये वाला ट्रैक मैंने क्यों कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है हमें आर डी बर्मन साहब की. और क्यों ना हो, जी हाँ, ये जो है, कहते हैं ना कि माएस्ट्रो हैं हमारे जो इंडियन सिनेमा के हैं. इनफैक्ट मैं कहूँगी मैवरिक माएस्ट्रो है, हु रीडिफाइंड बॉलीवुड म्यूज़िक. और जैसे कि इनके बारे में हमने बोला भी था ना आपसे, कि सुरों के सागर की लय और रवानिक थे पंचमता, वो हर सांस को एहसास की धुन और गीत की मेलेडी में बना देते थे. एक तरफ उनके संगीत में इंडियन क्लासिकल की गहराई और रूहानियत थी, तो दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी साउंड्स और ग्लोबल म्यूजिक का दिलकश संगम. उनका हर साउंड सुरों का क्लाइडोस्कोप था दोस्तों, जहाँ हर मेलेडी एक नया एहसास और हर नोट एक नई कहानी थी. पंकज अमरावती जी, आपने हमें लिखा है कि इस गाने को ज़रूर शामिल कीजिएगा, और गीत प्ले नहीं हुआ तो नाम ही शामिल कर लीजिए. जी आपकी रिक्वेस्ट ही पूरी होगी. इसी के साथ हमें इनफैक्ट होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भी 1942 लव स्टोरी का हमें रिक्वेस्ट भेजा है कि गाना कोई और है. लेकिन उन्होंने कहा कि 1:05 पर आपने मैसेज किया था. जी बहुत सारे मैसेजेस हैं, यकीन मानिए. तो मैंने उसी फिल्म का रिम झिम जो है दोस्त, वो क्यों कर दिया है. और इसी के साथ वेरी गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज प्ले द सॉन्ग. ओके, प्लीज प्ले द सॉन्ग. ऊपर वाला अपने साथ है, फ्रॉम द मूवी ऑफ सिर्फ तुम, डेडिकेट टू रॉय. सॉरी दोस्त, मैं इसका सही उच्चारण अगर कर पाई तो बताइएगा. रॉय कोविल मीठा, आई एम सॉरी, मैं उसका लगता सही उच्चारण नहीं कर पाई हूँ. सुनीता मोंदिरा, अंजोली भाईकॉन, अमल, सुष्मिता दिलाली, ओके दिलाई, मरीना, सुनील फ्रॉम जपरा लंगो. ओके, नागालैंड बॉर्डर से आपने मैसेज किया है. ओके, नागालैंड बॉर्डर से असम करबी अंग्लो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट. ओके दोस्त, थैंक यू सो मच कि आप हमें वहाँ पर सुन रहे हैं. इफ़ नॉट देयर दिस सॉन्ग कुड वी प्ले अनदर सॉन्ग, कहीं प्यार हो ना जाए. भाई कुमार सानू एंड अलका याग्निक, थैंक्स मैम. बहुत अच्छा लगा दोस्त कि आप सब हमारे आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहें, और इसी तरह जुड़े रहिएगा. और इसी के साथ मैं तेरे नाल लव हो गया. ओके, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरलानी भानु प्रकाश, और इसी के साथ मोनू परासर अलीपुर विलेज से हमें लिखते हैं. ओके, इनके भी चॉइस आई है. और इसी के साथ आदम नमस्कार जी, नमस्कार. जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज मोहम्मद, समरीन माहिरा, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए. बिल्कुल, हमने शामिल कर लिया है. इसी के साथ अंशु में थैंक यू मैम लिखती हैं. और इसके साथ हमें कृष्ण गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से भी मैसेज करते हैं. कान से मोहम्मद फुकान जी ने भी हमें मैसेज किए हैं. और गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन से हमें, इन्हें सभी गाने पसंद आ रहे हैं. किसी भी दोस्त के साथ हमारा नाम ले लीजिएगा, बारिश का कोई गाना ऐसा सुना दीजिएगा. ओके बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी मैंने क्यों कर दिया रिम झिम. आई होप आप इस गाने को पसंद करेंगे, आर डी बर्मन की धुनों से निखरे इस ट्रैक को आप पसंद करेंगे. आप ओके, इसी के साथ मैसेज आया ये हमें, प्रियंका जी प्लीज कविता देवभूमि उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, फिल्म कयामत, वो लड़की बहुत याद आती है. फिल्म दो तीन चॉइसेस आपने भेजी है दोस्त, कोशिश की जाएगी. इनफैक्ट ये हमें मैसेज आया है जैद और हुदा का. ओके, आपने भी हमें रिक्वेस्ट भेजी है बहुत सारे गानों की. सुन बरसात की धुन सुन, यहाँ तो बारिश का मौसम है, धूप जो है, सूर्य जो है वो अच्छा खासा चमक रहा है, फिर भी मैंने रिम झिम क्यों करा है. और इसी के साथ ये मैसेज आया कि थैंक यू मैम फॉर रीडिंग माई मैसेज, थैंक यू डियर.
और इसी के साथ चलिए प्रियंका जी है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, लवली ये गाना सुनवा दीजिए। आज आरडी बर्मन जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उन्हीं को समर्पित है। ओके, या फिर आरडी बर्मन का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड, रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए रिमझिम रिमझिम। वैसे एक बात है, अगर आप इस गाने को सुनेंगे ना, इसमें ना पंचम धाक की म्यूजिकल ब्रिलियंस नजर आती है, कैसे टाइमलेस म्यूजिकल विजन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, जहां इंडियन मेलोडी, पता आप देखिएगा किस तरह से बारिश के मौसम के साथ। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पंचम धाक ने बारिश के एहसासों को सुरों में इस तरह पिरोया है कि हर नोट बूंदों की तरह नरम और दिलकश महसूस होता है।

कहते हैं दोस्तों कि साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है, हमें म्यूजिक सुनाई देता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने कानों तक पहुंचाइए, रिलैक्स रहिए और हमें अपनी चॉइस बताते रहिए 9868107070 पर। और इसी के साथ अभी मैसेज आया है डॉली का और दिल्ली से, कहते हैं हेलो प्रियंका कैसी हैं, वेरी इमोशनल सॉन्ग इन्होंने हमें लिखा था तब भी बॉलीवुड ट्रेल्स में। और अभी उनका जो मैसेज है वो ये है, थैंक्स अ लॉट आपने कॉल की, बहुत अच्छा।

लगा, किसी और शो में हंसते हंसते बात होगी जब भगवान जी चाहेंगे बिल्कुल, और आपके फादर स्वस्थ रहें, क्योंकि हमने इनको कॉल किया था, इनका नंबर पहले, इनका जो मैसेज पहले था, लेकिन इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो बस जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। और अगर तुम साथ हो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हमारे पास खुश रहने की बहुत सी वजह है कि हम स्वस्थ हैं, जैसे अलका याग्निक जी के साथ हुआ कि सुनाई देना बंद हो गया, तब लगता है कितने सही, कितना कुछ सही है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तुमने बिल्कुल सही की डॉली, हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते ही नहीं, हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अपनी अपनी डेली रूटीन की सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गीत सुनने का टाइम होता है, बिल्कुल सही कहा, कुछ गीत रात में सुनने से जो फील आता है वो दिन में नहीं आता, जैसे ये रात नहीं पुरानी, ये रात नहीं पुरानी, जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हमें एक और मैसेज आया है, बहुत प्यारा एक मैसेज है दोस्त, मैं वही मैसेज देख रही थी कि वो मैसेज जो है वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बट नहीं, मेरे सामने अभी फ्लैश हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, और बस इसी के साथ हमें ये मैसेज है, ओके, राम राम जी, हेलो नमस्ते इंडिया, भाई ने बहन का, बहन के हाथ भेजा है पैगाम, क्योंकि इसी बहन के हाथ में है अब इस भाई की जुबान की लगाम, जो होगा बहन को पसंद वही होगा भाई की पसंद, एक मधुर संगीत का नजराना आज प्रियंका जी सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का अपने भाई के लिए भेंट करेंगे और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए भाई का को नजराना देंगी। ओके, शनिवार का सुनहरा दिन होगा, रेनबो के साथ हो, क्योंकि प्रियंका जी आपकी बातें और आपकी सकारात्मकता की सकारात्मकता ही सभी श्रोताओं को सुखद होने का एहसास दिलाती है और हर शनिवार आपको हमारे पास बुलाती है। इसके लिए हमारे रेनबो टीम के सभी सदस्य और आप सबको, सभी श्रोताओं को तहे दिल से जय हिंद। रोहित खेला नई दिल्ली से लिखते हैं, थैंक यू सो मच रोहित जी, सारे गाने मेरी चॉइस के चल रहे हैं और आपको मैं डेडिकेट कौन सा गाना करूं, अभी मैं इसको सोचती हूँ क्योंकि सारे गाने मैं कहती हूँ कि ना देशभक्ति ट्रैक जो है ना, मैं सभी को डेडिकेट करना चाहूंगी जो मैं नेक्स्ट क्यू कर रही हूँ। और इसी के साथ एक बहुत कृष्ण गुप्ता जी जौनपुर से लिखते, आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं और भी गाने देख रही हूँ दोस्त, आपकी भी चॉइस देख रही हूँ, कई बार गाना सिस्टम भी नहीं होता तो बताइए हम क्या करें, आप इतना गलत मत लिखिए। और इसी के साथ आज ये प्रियंका साहिबा जी, आदाब, इस गर्मी में इस तरह के गीत सुनाकर भी बादल आँख में चौली करने लगते जैसे ये वाले फिल्म के गीत, ओके, आपने दो तीन हमें चॉइसेस भेजी हैं, ओके, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फायरा, तारा, बुलंद चहल से, ओके, संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगह पर सुन रहे हैं, इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए, गीत सुनवाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप आदाब अर्ज कर रहे हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका दिल से शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज ही प्रियंका मैडम जी, आप पोएम बहुत लिखती हैं, संगीतकार आर डी बर्मन पर बहुत बढ़िया पोएम लिखी है, थैंक यू सो मच। प्रियंका का आपने रिमझिम सॉन्ग प्ले किया है, बहुत ही बेहतरीन नगमा है, रिलीज से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी आर डी बर्मन जी की, जी बिल्कुल। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं, और इसी के साथ हमें मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी हमें लिखते हैं, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, गुड आफ्टर, और आपने भी हमें दो तीन चॉइसेस लिखी हैं, आर डी बर्मन साहब का मैंने गीत जरूर प्ले किया है दोस्त। और इसी के साथ ये मैसेज आया है, सत श्री अकाल मैडम जी, कैसी हैं आप, मैडम मुझे शक्ति फिल्म का सॉन्ग सुनवा दीजिए, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया हम, बहुत अच्छा गाना ये भी, मैडम मेरा मैसेज जरूर शामिल कीजिएगा। ये हरी किरण सिंह फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, जी बिल्कुल। और फिलहाल ये मेरे सभी लिसनर्स के लिए, खासकर रोहित जी आपके लिए गाना है, देश से की मिट्टी से जुड़ा ये गाना है, तो चलिए अरिजीत सिंह को सुनते हैं।

इस गाने की एक एक लाइन आप महसूस कीजिएगा। इसके जो लिरिक्स है ना, दिल से निकले हुए लगते हैं। एक फौजी के जज्बात, एक सोल्जर्स के जज्बात, उनकी कुर्बानी, अपने देश के लिए उनकी मोहब्बत को बहुत ही संजीदगी से पोर्ट्रे किया गया है।

डियर प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम. ओके, मेरा वाला सॉन्ग आपकी स्वीट वॉइस में एंजॉय कर रही हूँ. आपने राज पिक्चर का गाना कहा है प्ले करने के लिए, क्योंकि आज आपकी पांच बेटियों के होते हुए आप अकेली बेटी, क्योंकि सब विदा होकर घर चली गई हैं, उनकी विदाई याद आ रही है. ये सॉन्ग सुनकर पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी. मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से हमें लिखती हैं. पहले तो कितनी बड़ी बात है ना कि देखिए आपकी सारी बेटियाँ अपने अपने घर में सुखी हैं, और मैं यही कहूँगी कि ये बहुत मतलब कहूँगी सभी वहाँ सुखी हैं. और आप देखिए मतलब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी की हैं. और ये वाला गाना मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ, सच बताऊँ तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि आपका मैसेज पहले भी आया था और अभी दोबारा मैं मैसेज इसको देख रही हूँ कि प्लीज़ ये गाना मुझे कहीं से मिल जाएगा. नहीं मिल पाता तो मैं कहूँगी कि हमारे आप अकेले कैसे हैं, आकाशवाणी रेनबो आपके साथ है ना, तो बस उसके साथ पूरा टाइम जुड़े रहिए. आप जुड़ी भी रहती हैं, आप अकेला बिल्कुल फील नहीं करेंगी. और सारे अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए. अभी देखिए हमें कितना अच्छा मैसेज था डॉली का कि हमारे पास कितना कुछ अच्छा होता है कि हम देखते ही नहीं है, बस हमें उस तरफ नज़रें ज़रा इतना कि घुमानी पड़ती है कि अच्छे पर्सपेक्टिव्स को भी देखना होता है ना. और इसी के साथ इसलिए नाराज बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं. और इसी के साथ हमें लिखा है ओके, राम राम जी वर्मा जी को जय हिंद. सुन लिया जी आपकी जुबानी देशभक्ति का प्यारा सा नजराना, तभी तो हमारा दिल से नमन है प्रणाम है. रोहित खेरा हमें लिखते हैं. और इसी के साथ डॉली भी हमें लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रियंका, आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ मैसेज है, प्रियंका जी थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे स्टेशन पर चला गया था, क्या आपने हमारी पसंद का गाना चला दिया? ओके, वेल मेरठ से हमें दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आया है. बहुत सारी चॉइसेस प्ले हुई हैं दोस्त, अब आपका गाना प्ले हुआ या नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते. और इसी के साथ मैसेज आया है कि बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, थैंक यू सो मच. और आपने ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मैसेज किया है. उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश और परिवार. इसी के साथ जो मैसेज है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं, अपनी प्रेम कहानी सुनाइए, अपनी प्रेम कहानी. नितिन मुकेश जी की सुरों से सजाए इस गाने को सुनिए.

जैसे आज बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि नितिन मुकेश जी का भी बर्थडे है, तो उनके लिए उनकी आवाज से सुरों से सजे किसी गाने को सुनाइएगा। तो बिल्कुल, और इनकी गायकी की सबसे खूबसूरत मैं बात कहूंगी कि अंडरस्टेटेड एलिगेंस है। जी हाँ, उनकी आवाज कॉम्पोजिशन की मेलोडी के साथ इतनी खूबसूरती से घुल जाती है ना कि म्यूजिक और वोकल्स एक ही रूह का हिस्सा लगते हैं, लगता नहीं है? ना, मैंने उनके बारे में लिखा है कि सुरों की साथ की आवाज में मिठास, सुरों की साथ की आवाज में मिठास, नितिन मुकेश के गीत रहते हैं दिल के पास, हर गीत में एहसास की गहराई, जहां ताल सरगम और जज्बात लेते हैं खूबसूरत अंगड़ाई।

तो मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊँ अपनी प्रेम कहानी, अपनी अपनी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। इसी के साथ प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। आनंद विहार वालों से क्या नाराजगी है, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारी पसंद का कोई भी गीत शामिल कर लीजिए। अभी तो गीत चलाया यू नो प्ले नहीं कर पाऊंगी। किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमें लिखते हैं, और इसी के साथ हमें मैसेज आए हैं, बहुत सारे मैसेज हैं दोस्त, इस समय मैं यू नो नहीं रीड कर पा रही हूँ। इसी के साथ प्रियंका जी, सुरीले गानों के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई प्यारी सी धुन भी स्ट्रेस बस्टर बन जाती है और सुकून भी मिलता है। बिल्कुल, रवि जोशी जी मेरठ से लिखते हैं, धुनें जो होती हैं वो भी रिलैक्स करती हैं। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके, पदमपुर जिला राजस्थान से मैसेज है, और यह है मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका। फिलहाल ये वाला ट्रैक है ओ सैया। ये बहुत ही प्यारी चॉइस हमें आई है। दिल्ली से मैसेज आया है, दोस्त नाम लिख देते, मुझे मुकेश लगा, शायद मुकेश, क्योंकि आपका पहले जो नाम आ रहा है वो भी उससे पता लग रहा है कि मुकेश का मैसेज है दिल्ली से। तो ये गाना बहुत अच्छा है, अग्निपथ मूवी से। इसी के साथ कहूँगी कि दोस्तों गीतों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखिए और अपनी चॉइस हमें बताते रहिए। आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। फिलहाल मनीष आ गए हैं, चलिए इसी के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।

0: आकाशवाणी।
1: कितने बढ़िया वाले ट्रैक चलाए ना प्रियंका ने, एक से बढ़कर एक। मैं गाड़ी में आ रहा था, सुनता सुनता क्या मजा आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो एक मजा जो था वो धीरे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बाहर कभी निकलता हूं तो मुझे लगता है कि वो गर्मियों के दिनों के अंदर ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। संगीत लेकिन ऐसी साधना है, संगीत ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं वो हर किसी चीज का आनंद दिलवाई देता है। अब देखो ना, गर्मियों के तेज दिन है, दोपहर में आप घर के अंदर एसी में, कोई कूलर में, कोई पंखे में बैठकर आप सभी लोगों में स्वागत यहां पे कर रहा हूं। क्यों, बात तो वही है ना, फिर कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे शो इस आशियाना के अंदर जहां बात करते हैं एक घर की, एक छत की, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की, प्यार की, अपनेपन की और उन सभी एहसासों की, जहां से हमारा परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ता है, एक बनता है और जिसको हम कहते हैं आशियाना। तो आज के इस आशियाना प्रोग्राम के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर रेडियो पर मैं हूं मनीष आजाद, रेडियो वाला वहां पर है आप, तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज के इस शो के अंदर। शुरुआत करते हैं और बहुत सारी और भी धीरे धीरे परिवार को लेकर कुछ कुछ कुछ बात करेंगे, क्योंकि ये है आशियाना।
2: ए ए ए ए ए ए ए ए ए

हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं परिवार की, हम बात कर रहे हैं अपनेपन की, हम बात कर रहे हैं परिवार की मुखियाओं की, एहसासों की, उस घर की, उस छत की, जहां सब कुछ होता है, तब जाकर हम कहते हैं कि एक आशियाना है। अब हम हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने घर के अंदर जो लोग रहते हैं या उस छत को, हम सब कहते हैं कि वो एक ही परिवार है। फिर भी एक ही परिवार होने के बावजूद भी उस परिवार की, या कहते हैं कि जब आप दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहां पर जो ये बागडोर है ना, ये किसी एक के हाथ में होती है, जिन्हें हम परिवार का मुखिया भी कहते हैं। वो कोई एक ही होता है हर किसी घर के अंदर, ये अलग अलग तरीके से। अब आप हर किसी के घर के अंदर जो आप देखेंगे तो उनकी बात ऐसी होती है कि मतलब उनकी बातों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आपके घर में कौन है, मेरे घर में कौन है, आपके दोस्तों के घर में कौन है, इवन हमारे जो और रिश्तेदार हैं उनके घर में भी एक ऐसा मुखिया होता है जहां पर जिनकी जो कही हुई बात है वो कोई भी टालता नहीं है, और उनकी बातों को सबको सरे रहा सरे आंखों पर रखा जाता है हर किसी उस पे। अब बात आती है कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई ऐसी दुखद घटना परिवार के अंदर हो जाती है या कोई खुशी का माहौल आता है, तो सबसे पहले उनकी ही सलाह ली जाती है। हम कहते हैं ना कि एक मुखिया है, ये क्या चलन है। लेकिन जैसे घर के अंदर आप देखेंगे तो मम्मी है, मम्मी की सारी बात चलती है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, हाँ जी ठीक है। घरों के अंदर देखेंगे पापा जी हैं, पापा जी भी सुप्रीम कोर्ट हैं। तो हर किसी घर के अंदर एक एक अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन कुछ घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जब नई नई नौकरियों पर लग जाते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी जेब के अंदर थोड़े थोड़े वो हरे हरे से नोट आने लग जाते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं जी, अब हमारे हिसाब से भी कुछ चलना चाहिए। इसके पीछे सबसे अच्छा एक कारण अगर आप देखेंगे, माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि वो बस खुश रहें, परिवार के अंदर जो खुशी का माहौल है वो बना रहे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करते रहें और एक दूसरे को इज्जत देते रहें। हर किसी बात को सम्मान देना चाहिए, ना कि उनकी बातों को नकारा चाहिए। हर किसी की बातों को सुनना भी जरूरी है, ना कि किसी एक की बातों को। कभी कभी क्या होता, कुछ कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो लगता है कि भाई ये सब गलत है, लेकिन लेने वाला इंसान को लगता है कि वो सही है। इसलिए इस सही और गलत के बीच में हम जब किसी एक मत पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं, तभी वो जाके एक परिवार का डिसीजन बनता है और उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें, भैया ने कहा कि नहीं मतलब कीजिए, अब मुझे तो बाइक या कार चाहिए। परिवार के मुखिया ने कहा कि नहीं भाई, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, ये पहले करेंगे फिर उसके बाद ये वाला काम किया जाएगा। अब कहने के लिए उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, बच्चों के हिसाब से उनका डिसीजन सही है, लेकिन समझना जरूरी किससे है इस समय, ये आप सोचिएगा, है ना। ये सुनते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे इस गीत के बाद कि कभी कभी ये जो एक मुखिया वाली उपाधि है ये कैसे दी जाती है। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत जो जनरेशन हैं उनको, क्योंकि कहते हैं ना, अनुभव एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा ये, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब तब आप अपने आप को भी ये कहेंगे कि हाँ, आज मेरे पास इतने सालों का अनुभव है जो आज आपके माता पिता कहते हैं और उनसे उनके माता पिता ने कहा।

इनके लास्ट वाले म्यूजिक के साथ हमने भी अपना इंस्ट्रूमेंटल मिलाने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि दिल से दिल के तार जरूर मिले पड़े हैं, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आज इस आशियाना प्रोग्राम को लेकर हाजिर आपके साथ आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला। जो रेडियो पर जो आवाज़ है ये मेरी है, उधर जो आप रेडियो में आवाज़ आप सुनाई दे रही वो आप लोग आपके घर में अंदर अपने अपने साथ में सुन रहे हैं, ठीक है जी। अब जब हमने बात करी है आशियाना के अंदर, जब एक मुखिया की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो मुखिया बनाया जाता ना, तो एक रस्म है जिसको कहते हैं पगड़ी पहनाया जाता है। पगड़ी पहनाने की रस्म जब होती है, जब एक परिवार का जो एक मुखिया है इस परिवार को, इस कुनभे को, जब कहते हैं कि वो अलविदा कह के चला जाता है, तो जब उसके बाद ये जो पगड़ी की रस्म है, ये जब जिसको पहनाई जाती है, यानी कि उस समय जितने भी वो लोग होते हैं, जो आपके घर परिवार के लोग होते हैं, जिनको बड़ा मानते हैं, जिनकी बातों को आप स्वीकारते हैं, उस समय वो सब जब ये रस्म अदायगी की जाती है, ये बताया जाता है कि अब से इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपके साथ अब अगर कुछ भी है, तो आपको कोई भी सलाह मशवरा, अपनी कोई बात कहनी है, कोई बात रखनी है, तो सबसे पहले इनके बात सामने वो रखनी पड़ेगी, जो इनका उस समय डिसीजन होगा वो मानना होगा, ताकि आप जब देखेंगे भी, जब इस तरह को देखने के लिए, जब हम परिवार में कोई भी सुख या दुख के अंदर जब हम कोई एक इन्विटेशन कार्ड छपवाते हैं, तो जब उसके अंदर जब नाम लिखवाया जाता है, ये उन्हीं नामों को दर्शाया जाता है, उन्हीं को लिखित किया जाता है और उन्हीं को बताया जाता है कि अब इस परिवार की जो बागडोर है वो इन के हाथ में है, क्योंकि अब जो पगड़ी थी वो अब इनको पहनाई गई है। आपके परिवार के अंदर आप देखोगे तो शायद आपने कितने जगह पर जाके इस रस्म अदायगी को अपने सामने से देखा होगा और समझा होगा कि इसके मायने अब क्या होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इस समाज में आगे बढ़ते हैं, तो समाज में कितने सारे ऐसे रूप हैं जिनको देखना पड़ता है, और धीरे

धीरे चलकर हमें उनके साथ साथ ढलना भी पड़ता है। यही सब चीजें आपको अपने परिवार में बच्चों को बतानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम सब उनको इन बातों से करके, अरे बेटा अभी तेरे के बात तेरे मतलब की चीजें नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, यानी कि जब समझदार होना शुरू हो जाए, तब आपको ये सब उनको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे करके सभी के साथ है। आज इस परिवार का है तो कल दूसरे परिवार का हिस्सा भी जरूर होगा। सुनने वाले सभी लोगों से मैं शायद ये वाली बात, अब मुझे अब आप सभी लोग भी अपने अपने परिवार के अंदर, शायद इन लोगों की बात ना पता हो कि अब हमारे परिवार के अंदर मुखिया कौन है, पूछ सकते हैं।

भाई हमारे हाथ तो कंप्यूटर से भी तेज चल रहे हैं, कंप्यूटर चक्कर चक्कर घूम रहा है, हम यहाँ पर तेज तेज चल रहे हैं। वेरी गुड, फिर से स्वागत आपका प्रोग्राम आशियाना के अंदर। जब कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पारिवारिक रूप से छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बड़ा रूप धारण कर ले।

जिस तरह से हमने आपको अभी बताया कि एक रस्म अदायगी होती है कि जब जिसको पगड़ी पहनाई जाती है वो परिवार का मुखिया बन जाता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें मतलब यानी कि वो बात तो है उन सभी के साथ में परिवार को लेकर चलने की, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बात शायद गलत है, जबकि हम उस बात को उतनी वैल्यू नहीं दी इसलिए वो गलत है। कभी कभी कुछ लोगों की जो बातें हैं, परिवार के बड़े जो मुखिया लोग हैं, जब उन लोगों की बातें होती हैं वो बातें सराखों पर होती हैं, माननी पड़ती हैं। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि आपको हर किसी की बात को सबसे पहले एक बार सुननी जरूर चाहिए, ना कि कोई भी अपनी बात किसी के ऊपर थोपनी चाहिए। अब मैं जो अगला जो मैं लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने ये कि आजकल आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत सारी अलग अलग रूप में रहते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम करते हैं, बच्चे धीरे धीरे इस तरह से वो स्कूल जाते हैं, स्कूल के जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऐसे ही वो माहौल आगे चलता रहता है। लेकिन एक समय आता है कि जब परिवार को उस रूप में उन बच्चों की शादी के लिए रिश्तों की बातें करनी पड़ती है। अव्वल तो ये हो जाता है कि हम बच्चों से आजकल इतने फ्रैंक हो जाते हैं, हम उनसे बोलते भी हैं कि भाई ठीक है बेटा, अगर आपको कोई पसंद है आप बता दीजिए, अगर आपको पसंद है आप बता दीजिए। यहां पर थोड़ी सी समझ तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि दायरा बढ़ाना चाहिए। आपको अपनी शादियों के लिए भी या अपने किसी सलाह मशवरे के लिए भी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने आज किसी को बोला कल शादी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस वाला काम होता है, हर किसी के साथ और हर किसी घर के अंदर है और हर किसी संस्कृति में, हर किसी समाज में और देश के हर कोने में है। यहां तक कि अगर मैं कहूंगा विदेशों में भी शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर तो ऐसा ही होता है। धीरे धीरे करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन उस समय भी जो परिवार का मुखिया होता है, हम कहते हैं ना कि एक बार उनको बताना चाहिए। जब उनको हम बताते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी शायद उनके पास भी कोई एक अच्छा रिश्ता या कोई अच्छी जानकारी या कोई अच्छे मिलने वाले लोग होते हैं, लेकिन बात वहां तक पहुंचती नहीं तो, और हम करते नहीं, हम इस उसमें रह जाते हैं कि क्या फायदा है सब कहने से, बच्चे अपने आप ही देख लेंगे, भगवान करे बच्चे अपने आप ही देखें और अच्छा हो। लेकिन आप सच में अपने दिल पर हाथ रख के एक बार ही सोचिएगा, क्या आजकल के बच्चों में इतना वो वाला पेशेंस है जो आपके मम्मी पापा के अंदर, आपने अपने दादा दादी के अंदर, नाना नानी के अंदर देखा है? जब नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी बातें समाज में रहकर आपको सीखनी चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को जब कभी पढ़ाने जाता हूं, बोलता हूं कि अखबार पढ़ना चाहिए, लोगों के पास बैठना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे पुराने जमाने की बातें कुछ जानिए, सीखने को मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि सब कुछ हमें ही आता है और आपको पता नहीं है मम्मी, और आपको पता नहीं है डैडी, और आपको पता नहीं है दादा, और आपको पता नहीं है दादी। आपके जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा होता है, यही सब बस मात खा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूं, आप कुछ भी नहीं। ये वहम अगर दिल से निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि परिवार के अंदर एक अच्छी नींव और अच्छे लोग और अच्छे समाज के साथ साथ, जैसे हम सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार में भी ऐसे ही खुशियां बन जाएगी। सब कुछ सब मिलाकर तो सब कुछ है, आप ही सब कुछ हो ये गलत है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है।

और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

हम जिनकी बात कर रहे हैं आकाशवाणी रेनबो की बात कर रहे हैं, आपकी वाणी है आकाशवाणी। आकाशवाणी पर प्रोग्राम चल रहा है कौन सा, आशियाना। आशियाने के लिए आज कौन बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं मनीष आजाद, रेडियो वाले बात कर रहे हैं। रेडियो पर जो आवाज आप सुन रहे हो वो मेरा वाला आवाज है, आपको जो सुनाई दे रहा है वो मेरा वाला आवाज है। मेरा नाम मनीष है, मनीष आजाद। चलिए, जब परिवार की बात करते हैं ना साहब, तो कहते हैं कि बहुत कुछ अपने आप में सहना पड़ता है, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी पारिवारिक परिवार को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप 9868107070 पर भी आप अपनी बातें बता सकते हैं। अब जिस तरह से हमने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम परिवार के जब नए सदस्य नए नए औहदे पर आते हैं, नई नई जिम्मेदारियां उनके कांधों पर आती हैं, तो बहुत कुछ घर के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी तक तो मम्मी पापा काम किया करते थे, ड्यूटी पर जाया करते थे, शॉप पर जाया करते थे, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए जिन्हें आपने पढ़ाया, पढ़ाकर अब उनकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद जब वो ऑफिस से घर आते हैं, तब आपको एक इस तरह से अपना रूप दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो जिंदगी में वो व्यक्ति पहली बार काम कर रहा है और पहला ऐसा ही इंसान है जिसके ऊपर इतना प्रेशर है काम का, और ऑफिस में उसकी कोई सुनता नहीं है, और सब ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो दुनिया जहान का काम है वो उन्हीं के सर पर है। अब साहब को या हमारी मेम साहब को, हमारी जो गुड़िया है उसको कैसे समझाएं कि बेटा जिन प्रेशर्स में से आज आपने अभी कदम रखा है, हम पिछले 20 साल 25 साल 30 सालों से वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन तब अचानक से जैसे ही उनसे पूछ लिया जाता है बेटा क्या हुआ, अरे आपको नहीं पता मम्मी, आपको नहीं पता, ये वाली बात कहकर वो हमें उस बात से नजरअंदाज तो करते ही करते हैं, साथ साथ में वो ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि आपके जमाने में ऐसा शायद ना होता हो, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, अब टेक्नोलॉजी वैसी आ चुकी है। साहब मेरे बच्चों, ये सब धीरे धीरे चीजें हैं ना, आपके साथ नहीं है, ये बहुत पहले से होते आई हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारी दफ्तर सिर्फ 9 से 5 ही रूटीन वाले होते हैं? ऐसे ऐसे कितने सरकारी दफ्तर नहीं, मैं कितने ऑफिस के बाप, सरकारी शब्द हटा दीजिए, मैं कहता हूं ऐसे कितने दफ्तर हैं, शायद आप अपनी मम्मी पापा से कभी उनके साथ बैठकर आराम से पूछेंगे तो शायद वो लंच भी अपना आराम से नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आपकी नई नई जॉब लगी है, आपको लगता है कि ये प्रेशर सारा आपके ऊपर ही है, आप घर पर आते हैं तो अपना ऐसा रूप दिखाते हैं, मम्मी पापा खुद शांत हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई लड़का ज्यादा, लड़की ज्यादा परेशान हो रही है, इनसे कुछ कहना नहीं, तो आप घर के काम कुछ कहना भी चाहते हैं, और अगर आपने बाई चांस की बात गलती से कह भी दिया तो सीधा ही जवाब है, आपको पता है ना मैं अभी ऑफिस से आया हूं या आई हूं, और उसके बाद आते के साथ ही मैं ये काम करूंगा कि अब मतलब अब आप कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि अब आप कमाने लग गए हैं, यहीं से जिम्मेदारियां जो कहते हैं ना उनका पतन होना शुरू हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, आपको अपने दोनों के दोनों जो पलड़े हैं उनको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर का काम बाहर और घर के काम तो आपको घर में रखने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, समस्या तब हमारे साथ हो जाती है कि जब हम अपने घर के कामों के साथ साथ में हम ये देखने लग जाते हैं कि हमारे जो घर के काम हैं हम उनको ऑफिस में या ऑफिस के काम को घर में लेके चले जाते हैं, समस्या यहां से बड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि साहब अब हम नए नए बॉस बन चुके हैं, नए नए मालिक बन चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आशियाना ऐसे बनता नहीं है, आशियाना बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है, और उन सब मेहनतों के पीछे

आपका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा चिल रहने का और उसके बाद प्रोग्राम करने का और मजा आने का। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, आशियाना प्रोग्राम चल रहा है। रेडियो पर जो आवाज आ रही है वो मेरी है, मनीष आजाद, रेडियो वाला।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात में मेरी भी मन की जो बात थी ना, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो नई जनरेशन होती है ना, जब उनके ऊपर नई नई जिम्मेदारी आती है, वो थोड़े बौखला जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि अब नई जिम्मेदारी है। एक पीछे एक सोशल साइट पर एक फोटो देखी जिसके अंदर एक पिताजी दिखाए हैं, वो थोड़ा हेल्थी से दिखाए हैं, छोटा बच्चा है, उसको डांट रहे हैं उसमें दिखते हैं। फिर उसके नीचे जो फोटो दिखाई है कि अब जो पिता हैं वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं और जो बेटा है वो बड़ा हो चुका, अब वो चिल्ला रहा है। अब इसका रिवर्स है, इसका मतलब मुझे उसको देख के, हालांकि अब आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि पहले वो चिल्ला रहे थे, अब ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब ये जो सर्कल है ना साहब, ये बदल चुका है। नए बच्चों के ऊपर, नई जनरेशन जिन जी के ऊपर जब ये जिम्मेदारी का एहसास बनता है, तो वो अपने आप को परिवार का मुखिया समझने लगते हैं, कहने लग जाते हैं। यहां तक कि मतलब कितने घरों के अंदर मैंने सुना भी है, देखा भी है अपनी आंखों से, ये कहते हुए कि अब परिवार में वही होगा जो मैं कहूंगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है साहब, इसके पीछे कारण ये भी है कि जो एक कमाई का स्रोत है, या जो उसको सोर्स कहते हैं, जहां से वो इनकम आ रही है, क्योंकि वो घर का अब जो खर्चा है वो उठा रहा है, या वो बेटी उठा रही है, तो फिर जो खर्चा उठा रहा है क्या उसी की बात मानी जाएगी? या अब वो कमा के लेकर आ रहा है तो क्या अब जैसा वो चाहेगा वैसे ही होगा? इसका मतलब तो अगर वो रात को 10 बजे के बाद अगर घर में घुसता है, 11 बजे के बाद घर में घुसता है, या वो बेटी घर के, तो क्या माँ बाप ना पूछें कि आप इतना लेट क्यों आए? क्या अगर वो अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहते हैं तो क्या उनसे ना पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब आप कमाने लग गए हैं। क्या आपको लगता है कि इन बातों से आशियाना बनता है या वो बिगड़ता है? क्योंकि साहब देखिए, धीरे धीरे धीरे करके जहां आप दीवार में एक हथौड़ा और एक कील से एक बार, एक दिन में एक अगर मारेंगे, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि साहब उस दीवार के अंदर वो छेद हो जाएगा, और शायद वो जो कील है वो धस्ती धस्ती इतनी अंदर चली जाए कि वो आपके मन के अंदर ना पीड़ा डालने लग जाए। तो इसलिए कहते हैं परिवार में बच्चों को जिम्मेदारी देना जरूरी है, आनी भी चाहिए समय के साथ साथ में, लेकिन यह भी समझना चाहिए साहब कि परिवार में अगर आपके माता पिता हैं, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली वाली बात है। और अगर आप उनको नकारते हैं और फिर आप ये दर्शाते हैं कि आप ही सबसे ऊपर हैं साहब, मेरे हिसाब से फिर मैं कहूंगा कि ये मेरा मत है, देखिए फिर आप भाग्यशाली नहीं है साहब, है ना? कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मनीष भाई आपने गलत कहा, कि नहीं आप भाग्य, वो हम ही हैं सब कुछ। ठीक है साहब, आप ही हैं। फिर इसको कहूंगा शायद मेरी ये थोड़ी सी जो सोच है थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी गलत हो गई आपके मायने में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।

0: कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
1: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

बड़े बुजुर्गों का कहना है कि साहब जब कोई आशियाना बनाया जाता है ना तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली जाती हैं, सीमेंट ईंट रोड़ी पत्थर तो ये सब डालते ही हैं साहब, लेकिन जो असल में उन चार दीवारों के बीच में रहकर जो आशियाना बनता है ना उसके अंदर प्यार की, अपनेपन की, एहसास की, उन खुशियों वाले रंगों की सबकी जरूरत पड़ती है, तभी जाके बनता है वो आशियाना। उम्मीद करता हूँ आज का जो प्रोग्राम है आशियाना आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मनीष भाई ये प्रोग्राम थोड़ा ठीक था, तो हम बस सुनने वाले सभी लोगों को ये कहेंगे कि जो नए लोग हैं उनको तो मैं खास कर कहूँगा कि जिम्मेदारी आपके साथ नहीं है, जिम्मेदारी सभी के साथ है। आज आपके साथ है तो जो आने वाली आपकी जनरेशन होगी आप उनको क्या संस्कार, क्या एहसास, क्या अपनापन और क्या जिम्मेदारियां देंगे ये तो भाई वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रोग्राम होगा अल्फाजन, और अभी मेरे प्रोग्राम के बाद में प्रोग्राम शाहिद लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। इसके बाद शाहिद भाई के साथ आप सुनेंगे सिटी लाइट के बाद में निखिल वर्मा आपके साथ में होंगे, प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स। फिर उसके बाद में विनीता बेदी आपके साथ में होंगी, आपकी याद आती रहे, और फिर रंगे महफिल प्रोग्राम होगा विनीता बेदी के साथ में। तो फिर मेरे जाने का समय, ध्यान रखिएगा अपना, है ना, इन सभी रंगों को जोड़कर रखिए, बनाइए अपना आशियाना।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

भगवान पर सुनीता बसुमती हिसाब लिखे गिना पता से गाना मांगी से मेरी जिंदगी है तू और तो फिल्म का नाम से सत्यमेवा जयति तू फिल्म का नाम से सत्यमेवा जयति तू और तो गीत तई डेडिकेट कर दी से मैके एंड मंदिरा अंजलि देवाशीष हजरिका रघुवीर मेहता अखुजो अमल बसुमती विमल बसुमती धनंजय कुलुमणि बरुआ कसीम आलि फागु उरांग भाईकन मुंडा सुनील फांगसो एंड ऑल फ्रेंड्स को गिना लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच सुनीता लिखी गिना पठाई दिया कारण तो अपनी मांगे गाना दिया बजाई दिया से होली गिना एन्जॉय करिए

0: in those nationals. Okay, so whenever we go to the nationals, so it's very enjoyable to meet them, to exchange their culture, to exchange their traditions, to exchange their fooding habits, because national doesn't organize at a one particular space place. It always organizes at a different states. Sometimes it organizes, now the national games is announced to organize in Meghalaya. ओके एंड उससे पहले भी मणिपुर में भी नेशनल्स होते हैं या फिर शिलोंग मेघालय में भी होते हैं या फिर दिल्ली में होते हैं, हरियाणा में होते हैं, पंजाब में. अभी हमारा सब जूनियर जो नेशनल है, फिफ्थ सब जूनियर नेशनल, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन जालंधर, पंजाब. सो हम ना डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, तो एक एडजस्टमेंट वाला जो एक सोशलाइजेशन होता है, दैट डेवलप्स थ्रू द स्पोर्ट्स. तो मेरे लिए नागालैंड में आना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था. तो मैंने नागालैंड के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना था, बाद में लोगों ने बताना शुरू किया नागालैंड में ये होता है, नागालैंड में वो होता है, बट व्हेन आई केम आई डिडंट सी एनीथिंग लाइक दैट. इट टू बी वेरी ऑनेस्टली, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वेरी पीसफुल प्लेस, एंड द चिल्ड्रन ऑफ नागालैंड इज I can compare these children from the Haryana children, because as the Haryana children are very strong in, you know, mind setup and their body anthropometry level. So they are also the same. Unka aggression is very good. Naga's aggression is very good, which is very much required in each and every sports, and specifically boxing. Okay, and their build is also very good, because their body structure is very strong. As they comes from the, you know, very humble families, and where, like, whenever we comes from the humble family, now we are very strong actually in character, even in the. I will give you one example. मेरे घर के साथ में किरायेदार रहते थे और वो बिहारी थे, एंड उनकी जो फैमिली थी वो रिक्शा चलाती थी, ठीक है, और उनकी मम्मी घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजती थी. आई एम नॉट कंपेयरिंग विद दीज चिल्ड्रंस, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. तो उनके जो बच्चे थे, उनको जो खाने के लिए मिलता था वो सब खा जाते थे. और हमारे बच्चे इतना ड्रामा करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें KFC खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें मैकडी खाना है. बट ये जो बच्चे हैं, दे डोंट, यू नो, ये बच्चे ना, ये किसी चीज़ के लिए ना, मतलब जिद नहीं करते हैं कि हमें ये चाहिए है, उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं. तो वो चीज़ भी इनको बहुत स्ट्रांग बनाती है, यू नो, माइंड सेटअप इज़ वेरी स्ट्रांग. बट द थिंग इज़, यहाँ का जो कल्चर है, सिस्टम है, वो थोड़ा सा सिस्टम एक सिस्टमेटाइज होने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन कम बैक विद द मोर एंड मोर बेटरमेंट.
1: थैंक यू सो मच फॉर दैट मैडम. एज अ कोच, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स फॉर अ बॉक्सर?
0: सी, सबसे पहले जो फंडामेंटल ऑफ बॉक्सिंग है, फंडामेंटल, देखो, स्किल इज डिफरेंट, फंडामेंटल स्किल इज डिफरेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट. ओके, सो बीइंग अ कोच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द टैलेंट विद अ सर्टेन, यू नो, वी गिव देम सर्टेन टेस्ट विच इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, एंड इन दैट टेस्ट इफ ही कम्स इन द मैरिट, ओके, बिकॉज वी नीड, फर्स्ट वी नीड एन एंथ्रोपोमेट्री, फिजियोलॉजी, ओके, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड. बच्चा बॉक्सिंग में अगर लंबा है तो इट विल बी बेटर, उसका नेक छोटा होना चाहिए, उसकी लॉन्ग आर्म्स होनी चाहिए, उसकी फीस्ट बिगर होनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर का पार्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, छोटा होगा तो भी चलेगा, बट लोअर पार्ट थोड़ा लंबा है, दैट्स फाइन, ओके, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड बिकॉज दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, सेकेंड थिंग इज, हम टेस्ट वगैरह लेते हैं पहले, ऑल द टेस्ट्स आर ऑर्गेनाइज, लाइक शटल रन है, या उसकी हाइट एंड वेट है, ओके, वो कितना लंबा होगा, कितना ग्रोथ उसकी जाएगी, ही विल बिकम टॉलर और नॉट, ही विल बी शॉर्टर और वॉट विल बी देयर. सो अगर शॉर्टर रहता है तो उसका वेट विल इंक्रीज और नॉट, ओके, अगर वेट इंक्रीज हो जाता है एंड हाइट छोटी रह जाती है, तो दैट इज ऑल्सो, यू नो, नॉट अ बेनिफिशियल पार्ट. एंड उसके अलावा फिर उसको हम चेक करते हैं उसकी साइकोलॉजी. हाउ वी चेक्स, वी आस्क हिम टू बॉक्स इन द रिंग. तो उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो डर रहा है, इज ही स्केयरिंग, इज ही हैविंग एनी फियर. यू नो, फियर को हम एक पार्ट तक ट्रेनिंग देकर ख़त्म भी कर सकते हैं. फॉर फर्स्ट इफ ही इज स्ट्रांग, उसमें डर नहीं है, तो बॉक्सिंग विल बी लिटिल ईजियर फॉर हिम. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हम बाउट्स वगैरह करवा कर देखते हैं कि बच्चे में, एंड उसके अलावा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्वेशन, लाइक हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हेन ही इज गिविंग द टेस्ट, दैट वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और इट इज प्रेशराइज्ड बाई द फैमिली दैट यू गो इन टू द स्पोर्ट, यू हैव टू गिव द टेस्ट. सो व्हेन वी सी दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट चाइल्ड इज वेदर डूइंग इट बाय द प्रेशर और बाय द इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज प्राइम मोटिव of ours. So first we have to see, we need his body structure is required, appropriate body structure according to the boxing is required. Okay, then we saw his psychological factors are there or not, do he have fear or what. If he is fearing, then we don't keep him. And these are the few things which we check.
1: So every child, when they come to enroll in this Khelo India Center of Excellence, they have to go through all of those tests, whatever that is required in order for them to qualify, just to be able to train here. Is that correct, ma'am?
0: Yes, sir.
1: Ma'am, it's been so wonderful to have sat down with you. Thank you so much for your wonderful insights into boxing. I am sure we can discuss a lot more about boxing and the scenario of boxing here in Nagaland. But for the first part of this interview, we will end it here today. So thank you so much, ma'am, for your time and for your willingness to come and speak to All India Radio. Thank you so much, ma'am.
0: Thank you so much. I'm really thankful to you for inviting me for your All India Radio interview. Okay. Yes, thank you so much, sir.
1: That was Dr. Nita Kumari, the boxing coach of Nagaland at the Khelo India Center of Excellence here at the IG Stadium. Thank you so much, dear listeners, for tuning in to our sports program. Until next week, this is your host, Sanchitang Murray, signing off for Akashvani Kohima.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री

0: अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।